0: अरे गोल्ड नुव्वु कनेक्ट अयिपोयो
1: एंटि
0: कॉस्ट्यूम चेंज
1: अंकि कनिची